0: मैं कुछ न रहा तुझ पे सब वारा।
1: ढेर खुले, ढेर जबरदस्त,
0: मेहरबान,
1: ढेर ढेर ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच शोत काल कौल यो जहान मन। हाँ
0: जी, थैंक यू,
1: ओके जी, डॉल।

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे।
1: या हबीबी या मुहम्मद या नबी।
0: कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

गाने बिल्कुल कर चुके थे। दोबारा बता रहे जमंग आवाज में दखेरा उस वापस ठीक सी रखे रखा जमंग आवाज में दखेरा वापस ठीक सी रखे रखा जमंग आवाज में दखेरा उस वापस ठीक सी रखे रखा। ओके जनाब दखेरे जमंग आवाज में बिल्कुल क्लियर सी जमंग आवाज में दखेरा सवाब चार सदा और मानी दोबारा क्लियर सी रखे रखा जमंग आवाज क्लियर दे रखे रखा दिल भर रेडियो चार सदा सवाबी मान रखे जदुन सेवा थैंक यू सो सो वेरी वेरी मच अतक जान दे रहे मेहरबानी दे रहे शुक्रिया दा तकड़ा मड़ा बच्चे चुंदी दिखेरा जमंग आवाज में दिखेरा बिल्कुल क्लियर भी दिखेरा जमंग आवाज में बिल्कुल सफा भी दिखेरा जमंग आवाज में दिखेरा दिखेरा ओहो चार सवाल जिंदाबाद ओए सवाल वालो ता सो गटल रखे रखा वाह सी वाह वाह वाह वाह वाह वाह लेकिन उम्मी गिस्तेन शी मजबूर है खा लेकिन उम्मी गिस्तेन शी मजबूर है जी लका लका कोई नुमी गिस्तेन शी मजबूर है सी वाह रे खा